जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों, आज बुधवार का दिन है, 24 तारीख जून का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। तमाम इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 03-265-65-60। ये कंतूर का टेलीफोन नंबर है, दफ्तर का तार की नंबर है। स्टूडियो और रेडियो SBS का एप तार का नंबर है 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसे वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और DAB प्लस रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं अपना मोटरकार में, अपना घरों में, और वो भी ऑनलाइन देश के बीच में नीदरलैंड और दूर दूर शहरों में और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज जबकि बुधवार का दिन है, गर्मी सा मौसम होने वाले है, हॉलैंड देश के अंदर में टेम्परेचर कहीं कहीं 35°F होने वाले है। तो फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन। चले भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के लिए और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम, हरि हरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनवालो, आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह इसी सुंदर भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम आरंभ किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम, आशा उम्मीद है सुंदर भजन सुनकर और आपने काफी पसंद किया है। बुधवार का दिन है और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, गर्मी सा मौसम होने वाले है हॉलैंड देश के अंदर में। न सिर्फ आज लेकिन कल, आने वाले कल भी काफी गर्मी सा मौसम होगा। खासतौर पर आने वाले शुक्रवार कहीं कहीं टेम्परेचर 40 डिग्री होने वाले है, फिर तक सेल्सियस अभी मैंने देखा तो 38 होने वाले है आने वाले शुक्रवार। फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आपको खबर किया जा रहा है स्टूडियो के अंदर तो काफी ठंडी ठंडी सा है, लेकिन फिर भी सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए खबर किया है कि घर के अंदर में काफी गर्मी है। तो चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बुधवार का दिन है तो सुंदर सा गणेश जी का भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन अभी आपने सुना, जो प्रोग्राम में पेश की गए गणेश जी का भजन अभी आपने सुना। चले अब की बार महेंद्र कपूर जी के आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया।

सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर भजन अभी आपने सुना। एल्बम का नाम अब क्या होगा, उसी एल्बम में से हमने ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर तार का नंबर है 030-262-6611। इसी तार के नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं या तो ऐप भी आप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। विपिन

देवा की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। वैसे आप हर एक सुनने वालों को भी खबर किया जा रहा है कि हॉलैंड देश के अंदर भी आज काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है। धूप ही धूप का मौसम, झूरा मौसम और गर्मी सा मौसम। कहीं कहीं शाम का टेम्परेचर जो है तकरीबन 35 डिग्री होने वाले हैं और आने वाले दिनों और भी ज्यादा गर्मी सा मौसम होने वाले हैं और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर जाने वाले हैं। उसी सुनने वालों देश विदेश में भी प्रोग्राम भजन यात्रा को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा गणेश जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आज। की खास भजन यात्रा प्रोग्राम में अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में प्रोग्राम भजन यात्रा में अब की बार एक सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में। तो चलिए मिलकर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए भजन यात्रा प्रोग्राम में सोनू निगम की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है

सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए आंसरों मीठे की भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुन रहे हैं और काफी पसंद आते हैं। वैसे आप सभी सुनने वालों को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है कि हर सुबह बहुत सी सुनने वालों भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सभी हमारा साथ देते हैं और भजन यात्रा प्रोग्राम हर सुबह बस सुनते हैं। चलिए आपकी बार एक सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी सिंपल के आवाज में।

आसरो भी थे। ये सुंदर सा भजन आपने सुना सिंपल के आवाज में और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की सरिये जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक भजन के बाद आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। चले प्रोग्राम में शैलेंद्र सिंह के आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा।

शैलेंद्र सिंह की आवाज पे ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो तैयारियां कर रहे हैं नौकरी की ओर काम की ओर जाने के लिए, सभी को शुभ दिन। सभी बच्चों जो तैयारियां कर रहे हैं पाठशाला की ओर स्कूल की ओर जाने के लिए, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम रोजाना और हमेशा सुनते हैं, उनके लिए, उनकी पूरा परिवार के लिए और खासतौर पर हमारी सभी रेडियो SBS का एपर्स के लिए, सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है देश विदेश से भी, उन सभी के लिए, उनकी पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए ये सुंदर सा आरती भजन बस पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, सुनने वालों यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। आशा और उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। कल भी फिर है बृहस्पतिवार है, गुरुवार, कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

अलकन मोहब्बत हो गए। सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गए। 8:14 वेटेड हो चुका है। बुधवार का दिन 24 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव शेड्यूल ट्रैक से। लाइव फनाउट हार्ट फॉर नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड वही चमकता हुआ सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। लाइव फनाउट मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड यूट्रेक्ट शहर से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। गर्मी सा मौसम है, काफी सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार किया है और कहा कि आज काफी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। हाँ, एक्ट वेयर फुरन लेकर मीठा मीठा सा फेस। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन सकते हैं DAB प्लस द्वारा पूरा की पूरा हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक मेरे नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम अपना DAB प्लस रेडियो के जरिए घरों में मोटरकार में आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। स्टूडियो के अंदर ठंडी ठंडी सा है, बाहर गर्मी सा मौसम, तो चले गाना की ओर हम आपको।

हो रहा है। गाना जो पेश की गई फ्रॉम द मूवी सरफरोश फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में अभी आपने सुना। आओ मीर दान फिर तक यहाँ रेडियो SBS का प्रोग्राम शहरी तरह से बस पेश किया जा रहा है। चले फिल्म आन की ओर, एक फिल्म जो 2004 में रिलीज किया गया है। द बेस्ट सिलेक्शंस, द बेस्ट गाने नख में हमेशा रेडियो SBS की जरिए बार अंदर्स।

खाजी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

मेहमान और स्नेहा पद की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। चले हम आपको ले चलते हैं रूप कुमार राठौर की ओर, मिस्टर सिंह एंड मिसेस मेहता फिल्म का नाम है।

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई पत्थर की सनम फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास एक्टिंग किया हुआ गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

The Mighty Mukesh की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आज की इस प्रोग्राम में। एक काफी पुरानी

रेडियो SBS के जरिए ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना शहरू तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 100 बरस की जिंदगी से गाना कबूल और इसी तरह से मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में गाना पेश की गई। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मुकेश की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है इस गर्मी सा मौसम में। चले आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं भोजपुरी गाना की ओर। एक भोजपुरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और गाना पेश होगा तलत महमूद और लता जी की आवाज में।

एक बड़ी ही खूबसूरत भोजपुरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक एल्बम में से ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लागी नहीं छूटे राम एल्बम का नाम है एल्बम जो 1963 यानी कि 1963 में रिलीज किया गया है। तलत महमूद और खासतौर पर लता जी की आवाज में ये गाना भोजपुरी गाना भी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक और भोजपुरी गाना की ओर। तलत महमूद और उषा मंगेशकर की आवाज में आपकी बार आप सुनेंगे। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आपकी बार ये भोजपुरी गाना पेश किया जाए।

तलत महमूद और उषा मंगेशकर की आवाज में ये बड़ी ही खूबसूरत भोजपुरी गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए, और मालूम होना चाहिए ये गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, भोजपुरी, और वैसे हम सभी सूरीनाम देश में भी भोजपुरी बातें करते हैं। हाँ, भोजपुरी हम सभी सूरीनाम देश में भी बातें करते हैं, और इसलिए हम सभी को काफ़ी पसंद है ये सब गाने। चलिए, प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में गाना जो अब की बार हमने सेलेक्ट किया है आज के प्रोग्राम में, ज़रूर आप सुनते ही रहना। जबकि 5 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में, और बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, हाँ दिखाई देता है कि बाहर काफ़ी गर्मी सा मौसम है, लेकिन स्टूडियो के अंदर में तो जबकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मालूम नहीं होते हैं कि बाहर इतनी गर्मी सा मौसम होगा, जबकि धूप जोर तोड़ से भी दिखाई देता है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मत भूलना कि आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए, हाँ पानी ज़रूर आप पीते रहना, गर्मी सा मौसम है। चलिए, प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी द माइटी मुकेश की आवाज़ में। माइटी मुकेश की आवाज़ में ये गाना बस सुनते ही रहना। श्रीमान सत्यवादी, फिल्म का नाम 1960 का फिल्म है, हाली दिल हमारा।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुख्य इसके बाद चले आज के प्रोग्राम में तलत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में फिल्म पतिता का गीत पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की ओर पहचान फिल्म का गीत पेश होगा। 1970 का फिल्म, फिल्म का नाम पहचान, मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में। और गाना का बोल है कल दिल के बाद बस आज मौका है।

0: पुरानी फिल्म पहचान का गीत पेश की गई मुकेश और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में, फिर से प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म प्रेम कहानी है, उसी फिल्म का ये गाना।
1: ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से

और रेडियो SBS की सरिये मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर कुमार की ओर, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम प्रेम नगर, उसी फिल्म का गीत की ओर।

उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656660। इस तार की नंबर पर हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किशोर एनाशा

गीत भोज प्रोग्राम में पेश किए गए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। दिल में जो बातें हैं, किशोर और आशा के आवाज में खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले अब की बात लता मंगेशकर और किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में फिल्म जुगनू का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। अब की बार मुखी सौराष्ट्र जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो अपना मोबाइल फोन, टैबलेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मुकेश और लता मंगेशकर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

रंगोली का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में एक पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

0: प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: हाँ, मैं एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
2: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए

गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी है। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में।

और रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना फिल्म का नाम कसम से। रेडियो एस बी एस के जरिए ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश किया है। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में जानव इस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसके जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड के प्रोग्राम में

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अर्जुन सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रिया जी की ओर। श्रिया जी की आवाज में अबकी बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खासतौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में, सपने साजन की फिल्म का नाम

Sunnevallo Radio SBS का वेबसाइट radiosbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

zijn hier Dulce Kumar, Arjit Singh en अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

şey cebeli en suçkin cohan diye ben smem ya bni sunati program beyi kutsurat yanar. फिल्म दबंग की ओर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एन का

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए और भी खूबसूरत नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम में।

एक गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार एनाशा, किशोर कुमार एनाशा जी की आवाज में ये गाना

0: उमंग कहती है।
1: अरे प्यार करा ये रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।

ट्रॉफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में।

मुकेश और आशा जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नखमे आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल दी फॉर हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस गज़ल दौर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेर्दर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम द लीजे मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसों दूर जुबेन नौटियाल कॉम्प्ट होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अद फिल्म क्यों हो गया ना, एन अतिश का अख्तियार दूर विवेक ओबरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैत वारस आर डेट। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

पिया तू अब तो आ जा बस आउट द फिल्म कारवा एंड आउट द फिल्म जानम समझा करो कौम सबकी बारात आई डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना दिल्ली देश को सौंदर अलका याचनिक।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एंड कम्स आउट द फिल्म वक्त। गाँव द फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजाओं दो रेखा भारद्वाज कम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका अनीता।

लेकिन गर्मी है ही। आपका हाल कैसा है ये गर्मी में? हाल बेहाल है या खुशहाल है? आप बता सकते हैं स्टूडियो में तार करके 03-262-66-66-11 पर। जैसे आपको मालूम है तो हमारा साथ होगा 9 बजे तक। आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना।

यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर। फिल्म का नाम है धर्मात्मा और आपको सुनाएगी वही किशोर डा की आवाज़ में

चेहरे में वो जादू है। कल्याण जी, आनंद जी ने म्यूजिक सजाई इस फिल्म में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा और आपको सुनाए किशोरदा। फिल्म कभी कभी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और साथ दे रहा है किशोरदा।

नजारे हम क्या देखें। फिल्म कभी कभी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में और साथ दिया है किशोर दा। फिल्म वॉरंट

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में किशोरदा फिल्म वॉरंट। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

नजर तो मिला जो दूर न जा, मिलेगी फिर न ये घड़ी, तेरी ते निंदिया उड़ा लूंगा मैं।

0: मुझे दर्शा गले से लग जा मिलेगी फिर न ये घड़ी तेरी ते निंदिया उड़ा लूंगा मैं गोरी तेरी ते नथनी चुरा लूंगा मैं गोरी
1: विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी के वास में आजा मेरी जलपरी फिल्म प्लेबॉय।

बम्बई से आया मेरा दोस्त और आपको सुनाए बप्पी लहरी फिल्म आपके खातिर। इसी फिल्म से निकला है एक दूसरा गीत, आपको सुनाएगी किशोर।

हाँ सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका अनीता। द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

0: अरे अब क्या कहना है, अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी।
1: अच्छा,
0: अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तू दुल्हनिया सजेगी। अब तो

de Diamond Voice Moment Review. Rock and Roll Queen Asha Bhosle. फिल्म का नाम है अपना खून। इस बार आप सुनिए, हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते और आपको सुनाएगी किशोरदा और अनुराधा पौडवाल।

किशोरदा और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आपने सुना। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। इस बार आपका सेवा करेगा किशोरदा, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बदलते रिश्ते और आपको सुनाए हैं किशोदा और मोहम्मद रफी और सोमन कल्याणपुर। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म दमाद।

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले आपको सुनाई फिल्म का नाम है दमाद। दमाद से हम बढ़ते हैं फिल्म देश परदेश।

तेरे हौले हौले दिल और दीवार किशोर डा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में।

दिल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और किशोर दा के वास में पुरानी फिल्म डॉन से निकाला है ये गीत फिल्म डॉन। पति पत्नी और वो, फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो, और आपको सुनाएगी महेंद्र कपूर और साथ दे रही रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

कपूर और रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म पति पत्नी और वो फिल्म फंडेबाज। और आपको सुनाएंगे रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले आठ बजने में, सुनने वालों आठ बजने में छह मिनट बाकी है।

शबाब, जब मिल जाए तो दुनिया को छुट्टी हो जाए। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले फिल्म फंडेबाज के से निकाला गीत आपने सुना। इस बार गोलमाल, पुरानी फिल्म गोलमाल से द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में।

इंद्रनील रॉय के आवाज में सुनने वालों आपने सुना एल्बम 14 सुपर शोज और आपको सुनाएगी निजाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और आपको सुनाई है लकी सिंह, एल्बम का बोल है लकी फॉर यू। उमर वागित हुसैन

रहे ना रहे हम संजय जोधा के वास में, आपने सुना। नौ बजने में सुनने वाला 6 मिनट बाकी है, उसका मतलब है ये आखिरी गाना है, आखिरी गजल आप सुन रहे।

सुनने लो। आशा उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा मुलाकात होगा बुधवार को, आप ये जरूर सुनते रहना इसी रेडियो स्टेशन के जरिए।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।